0: मातुष्टः स्थितप्रजनस्तदोच्यते दुःखेष्वनुदुमिङ्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोध स्थितधीरिमुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नापि नन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रजना प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कूर्मङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थिभ्यः तस्य प्रजना प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्यं रसोऽप्यस्या परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रजना प्रतिष्ठिता दुःखेर संसारे आनन्दे अबिचल थाकार साधना स्थितप्रज्ञेर एषणा जगते यथार्थ सुखे थाकार कौशल हच्छे स्थितप्रज्ञेर जीवनचर्या वासनाई हच्छे दुःखेर मूल जिने मनेर सकल वासनाके सम्पूर्ण त्याग करे परमार्थ दर्शने आत्ताई परितृप्त थाकेन तिनी स्थितप्रज्ञ दुःखे तिनी निरुद्वे सुखे निस्पृह ओ निराशक्त क्रोधरहित निर्भीक मननशील व्यक्तिरि लाभ हय ब्राह्मी स्थिति तिनी जावतीय वस्तु ओ व्यक्तिते आकर्षण विहीन प्रिय विषयेर आगमने आनंदित बा अप्रिय विषये विषण्ण कोनोटाई तिनि हन ना भीत कूर्म जेमन अंगादि स्वेच्छाय संकुचित करे ठीक तेमनि जिनि रूप रस शब्द गंध स्पर्शादि युक्त विषय समूह होते इंद्रिय राज के प्रत्याहार करें तिनि स्थितप्रज्ञ विषय ग्रहणे अशक्त रुग्ण व्यक्ति बा भोग विमुख कठोर तपस्वी विषय होते निवृत्त हलो तादेर आसक्ति सहजे विदूरित है ना ब्रह्मे तथा परमात्माय चित्तस्थिति लाभ करले विषय और विषय तृष्णा दुई चिरतरी निवृत्त है विक्षेपकारी इंद्रिय समूह मेधावी पुरुषेर मन को जोर करे विषयेर दिके टेने निये जाए जेई जोगी सेई इंद्रियगुलिके संयत करे आत्मस्थ हये अवस्थान करें तिनी हलेन संसारे अबिचल शांतिर अधिकारी स्थितप्रज्ञ व्यक्ति।
1: सुभाषित अनुष्ठानटी शेष हलो। आज शुनलेन गीता थेके पाठ, आकाशवाणी कलकाता, गीतांजलि प्रचार तरंगेर अनुष्ठान शुनछेन। एखन संगीतांजलि।

0: অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ
1: মন্ত্রণালয়।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी हाँ? माटी भी तंदुरुस्त और लोग पहली वाली बात कहाँ
2: पर हम तो सभी डाले हैं
1: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
2: सच है
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं
2: ठीक है भाई मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: অনুষ্ঠানটি নিবেদন করল ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান শুনছেন মিডিয়াম ওয়েভে 456.6 মিটার অর্থাৎ 657 কিলোহার্টজে। একটু পরেই শুনবেন খবর দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की 1 दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
2: आज दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकट, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। भारत ने कल भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। पेचिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ, साथ ही सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों के जरिए सीमा व्यापार सहित लोगों के बीच बढ़ते संपर्क पर संतोष व्यक्त किया। इससे पहले 2 दिवसीय चीन यात्रा के दौरान श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ.